0: درهم.
1: आम गोते गाहन की वारंग हंदाहन ने तेमी हैं। बैद वस्तु हो खांग अने बैद वस्तु फोनवं जे मेल तब फोनवं। बर्थडे से हंदाहन कुरंग अधि माँ उन्दोगु कमे। एक अमुक बिल ता दक्कन ता। दुव हकुए संदान उन्ने तेने। करंट बिल, फेम बिल, फोन बिल कस लाहिन नुवान। हंदाहन विसुरे। वगुतुं वगुता फाही पे में दुरी को फ्यासा विस ट्रांसफा कुरेवे। क्यागें बिल कंडाला फा पेमेंट रिक्वेस्ट विस फोनवे। सारी दो। गेमिंग रीचार्ज विस हम फाही पेइं। अनलिमिटेड रीलोड अधिरास्टस। ऐसा के हुरिहा मुआमलाते फाही पे में दुरी को फाही पे वारा फाही।

0: पाजी थोड़ा जा क्लोज, थोड़ा जा। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, रुको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह भाई वाह, की जोड़ी है यार, गुड।
1: ध्वनि तू कहाँ गुम हो जाती है, तू भी चलना हमारे साथ,
0: आइए आइए सर,
1: सनसेट पॉइंट तक फोटो खिंचाना।
2: नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ ऊंची ऊंची फोटो सेशन में, आई विल स्टे हियर, जस्ट मी।

0: माय गॉड,
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
0: पर क्यों?
1: क्योंकि ये देखो #you #out #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे कूदने से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: दिव्य हिराजे के मिनिमम दिवस
1: 26 जुलाई।
2: हिमबिह रखा तेरू
3: हिमबिह वैक्सीन दे डोज हम करूं
2: सागोंड लैगिंग अद्दू
3: कैसा किबी अलानम अंगया ने फेट निवा करूं
2: हिमबिह के एवस अलामाते हुरनम मास्क एलूं
3: आदि हिमबिह के अलामाते हुरनम एक हेरिवों
2: हिमबिह के अलामाते फेनिजनम लस नुकुरवा सिही फरवा हो दवा
4: मे इस्माइल अफन rang kulanu kula alikula hudu kula feneye divehi utum aduhamanti dani nuadi eke megahertz divehi fm domveli

0: अस्सलाम वालेकुम नोदे के मेगाहर्ट्स दिवही एफएम मेगाडी का आडोस समंग एंदमा एमेहा एहुं तेनवर उफाविर वागुत कोलकं एदमु दिवही एफएम कुरे गेंदा एहुं तेरिंगे होवु मिसेस सागे मुलें आ शोयका एकीगा मियद मेगाडी का मि बद्दल कोली अलगुन फहीदा एहुं तेरिंगे होवु मि शोयकी एहुं तेरिं रिक्वेस्ट कोला लवता हिमनाल दीगें कुरे गेंदा शोय शोग बैवरी वेलमा नूनी मिगडी का लवें हिमनालुमा मेसेज कोला मिजेहनी पीएसएम एआ मेदरको पीएसएम एआ मेदरको डीएफएम 91 पेज मेसेज कोलीमा बैवरी ना गुलालादी एहुं तेरी रिक्वेस्ट कोला लवत हिमनाल दीगें कुरिया केंदानी शोग फुरतम फिशमा का मी इववाल देनी दिवेही अमिनला राव के लवे मी लवे की एमला लवक्याफ मिवनी इब्राहिम सिरा वहीद
1: दिवेही एफएम के कुम्मे गडीरे के फैशन में दिवेही अमिल्ला रागे के लवे को

0: दिव्य राज्य के मिनिमम दिवस
1: 26 जुलाई।
2: वो दिए 1 मेगाहर्ट्ज़ दिव्य एफएम।

0: মুন্না কবা কি হি না কে দেড়া হিয়া
1: আলহামদুলিল্লাহ মুন্না আরাঙ্গা কালো মেং দেড়া হিয়া
0: আফনাস দেড়া হিয়া মুন্না মুন্না কম বড়া মকে দাক্কা ফুং আতা
2: মুন্না তি হে বরক হ ভেন্না হিং কমেন নে আফন তি কং কোলান না
1: তি কো দুং হাউ দা হাই রাঙ্গা লায়ে তি হেং মুন্না আই কহি আহো হাল বলা ফে মুন্না সকাং কং কো দেন না হে দি মুন্না ওয়ারহা উপাওে
3: ಹಿಮಬಿಹಿ ರಕ್ಕಾ ತೆರವು
4: ಹಿಮಬಿಹಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಡೋಸ್ ಹಮಕುರು
3: ಸಾಬೂನ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅದ್ದೋವು
4: ಕೆಸ್ಸಾ ಕಿಂಬಿ ಅಳಾಣಮ ಅಂಗಯ ನೆಫೆ ನಿವಾಕುರು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಎವ್ವಸ್ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಣಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳು
4: ಅದಿ ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಣಮ ಎಕ ಹೆರಿವು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರ್ವಾ ಹೋದವ
5: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ನುವಧಿಯ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್

अम्र बुनो अब्दुल मनाफ के दौर अब्दुल मनाफ के दारिंग तेरे गहिमिने अम्र नुवत हाशिम सिकाया हज्जु वरिन नशा मक्काया गन्न मीहुना फेंदि बेनेगुन हमजसा दिनुमा रिफादा हज्जु वरिन कांदिनुमगे कंतन हमजसा दिनुम मिकंकमा हवादच अम्रवाकी मुसंज अम्र मिकंकमन इस्कुरेवुमुन एनाया एम्मा बडु अब्दुल शम्स शाम करे हिंगेच अम्रु एनागे कौमगे साई मकबच एना वेरिकमंग इस वीरु अरबिन नकी फिनी मोसुमग सहरागे होनुकन लिबिगतुम सहराय नुकुमे उले बाई एई आबादु एफवा रर्रशुगे गद फिनी सलामे बुम अदि एवरेंगे जमालु तक फेना हुईहा पाने विनया गस होदुम अदि होनु मोसुमगे गद होनु सलामे बुम टका फिनी होनु में मेदुमे रर्रश दतुरुको मुलुनु अम्रु मिकंतत्त कामेदु विस्ना फिकुरु कुरुम फहु कौम फैदा हुरिगुतक ए दे दतुरु तंसीम कुरुम कटे एड़ि मिगुतुं फिनिमूसु मुगे दतुरु हमजेसी यमनशा हबशाय कुरा वियफारे दतुरेगे गुतुग एई इदरशुगे हूनु कमुगे आराम दिपगतु मट्टका अदि हूनु मूसु मुगे दतुरु हमजेसी शामकर्य कुरा वियफारे दतुरेगे गुतुग एई शामकरागे मेदुमिनुगे जव्वुन्ना मीरु फेनुं आराम दिपगतु मट्टका मैंगल्लो कुरेश सूरतुग अंगवाफवा दे दतुरकी मि बयांकुरि दे दतुरु कुरेश सूरतुगे एव्वन आयतुं हतरुवन आयतुगे मानई कुरेश वंग्यागे मीहुं एकुवेरि कुरे बिकमट्टके फिनिमोसुमा होनुमोसुमुगे दतुरुग एवरें एकुवेरि कुरे बिकमट्टके फहे मिगे फुळुगे वेरि रस्कलांगियं एवरें अळुकंकुरा हुशिकमे एकलांगेई बंडुहा होनुकमुग वणिकुं एवरेन कांदेव्वा अदि बिरुवेरि कमुगा वणिकुं एवरेन्नं अमांकं देव्विरस्कलांगेई।

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: लव फीता
2: मी लव फीता।

बिस्मिल्लाह रहमान अस्सलाम वालेकुम नो थे के मैं घट्स दी वे पे मम्मी गाडी का ट्यून कोल्ला दी बे मैं हूं ते नवर हूं फावर वागुत कोल कंगे दमो मी गाडी का कुरिया केंदा लव फीता शो या की का पद्दो को लिया गन शाहू ता महमूद लव फीता मी शो या की लव तक का गोडुं हुरी मजा केम तक काय की गाड में कुरिया केंदा शो मेरे के शो इस नो गड़ती री सिंगमा हमें कुरिया केंदा रो लवतका गुणुं हुरे मासे केतके मे बणेनी बायफार लवेन इवाला फेग हिमेने पहिन नगा एबसे बेणु करोनु कोई नूनिया एहन लवे गे राग क एहन लवे गे लिरिक्स से कै कोंदे लवे कमुनल दे मिजे नूनिया बाहे दिनी लफसुं ए राग हम बाहे दिनी मा ए बाहुं फेशे लवे क्याल दे मिजे ने वारा फासे अमसे केतके मिहरी दे मिगे इतुरु मी हम एगो तक किया बाय से बायफार ए लवे जहाल दे लवे किया फिर न गोतक है किया फिर न राग करनू निया डायलोग है वैसे किया फिर न गोतक हम खियाल दे मिजे नेरा मासे के फुरी हम अभी हेर दिन जहाल दे ना हम इदलाफा ओ इदलावे हैं में गेम कुलें शो के रिवा फराय तक मिशो वरब बराबर वान शो कुरिया दाने नो अगर तीरी सिंग माह में पीएसए में ऐप में दोर को मैसेज कुरा मुगे ना नी डीएफएम 91 मी पेज हंगे रमे कुलों शो में गुणाल दे ना वर रीत लव तक मेरे के शो के इविगेन दान है विमा शो का बै वेरी वाम बेन वाफ वर तक आवा मैसेज करो मुंदाम भी पी एस एम ए आ एप में दो रिको इवाल देन फिश मट का वर रीत लव लव फो बदो कोल्लाना मेरे के बै वेरी ना एको